ए वाणी महापुरुष की निज कर वासा हो गुरबाणी गावो भाई अमृत वाणी अमियो रसी अमृत हर काना अमृत वाणी अमियो रस अमृत हर काना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गाव पाए सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए।

कवि कहते हैं सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सास संगत तेरी कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं।

जिति किसे बादशाह का घर नहीं और वो था है आनंदपुर साहब आपको सदा जिते कलगियां वाला बादशाह है तो मैं भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करते सुने उन्ना बवंजा कवि रखे सुजान चंद मैं तेरा दोस्त हूं।

सजीव इसी तरह संगता सजीना है। संगता भी पीड़ लगे वारी वारी सारे मत्था टेकते हैं। गुरु की असीस लेके अपनी अपनी जगह बैठ

फिर कहने रहा महाराज मेरे मन में चैन है। तो सतगुरु जी फिर कहते हैं तेनों आख्या भज जाए।

दौड़ता जा रहे हैं क्यों क्यों मेरे गुरु ने किया है सुजान चंद दौड़ जा ये दौड़ता पे है।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलता काटा है, सिमरन करता रहता है, पता नहीं कौन है।

कि अज यह समा आ गया, अज सानू चल के तेरे को आना पे हर को सतनाम सुजान चाहिए तेरी सेवा के बदले।

कुछ नहीं करना पैदा बाणी पढ़ना ऊंचा सुचा जीवन रखना नशियां का त्याग करना यह ही अमृत है यह ही अमृत की दाल के नाल मिलता है छल प्रेम नहीं करना झूठ नहीं बोलना अणक वाला जीवन जीना फिर सत्संग एक रहना आओ भाई आखिर एक समाप्ति करते हैं अमृत अमृत दाल।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिया बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक जोगी जिन्हें तपस्या कीती ते वर प्राप्त कीता मैं जिन्हू चाहवां

शहर आके लंगर छक गए। पर एक आदमी बड़ा हंकारी जापते, ओ लंगर छकन वास्ते नहीं।

जोगे कहन लगा एक और फिर जाओ ओसनु को मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

कुआं बंद कर ले, चेले वापस आए। जोगी कहन लगा एक बारी फेर जाओ, तिलकू नु आखो।

एक इन्नी शक्ति दा मालक है जेड़ा मेरे आखे नहीं लगदा। जोगी आसन ला के बह गया, रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन, उन रिधियां सिद्धियां दे सद

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई दिल कुछ उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनी जाना वार देंदे, गुरु दे चरना तो कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा। बुआ खोले सामने भाई तिलकू दे।

जोगी जेड़ा सी कहन लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा है जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता है उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता भाई तिलकू जी कहन लगे मेरे गुरु मेरे नी ते सारियां दे सांझे ने उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां उच लग गया। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इस वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्होंने।

करो जिथे निभा सको ते निभ सके, दोस्ती ओ दे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे। ए ठीक है कि भला करो, भला करो जरूर, पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे तां उत्थे भला करो जिथों

रंग बदली हो गए। जोगी कहन लगा तिलको, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी, बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने।

तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए, मलाह नूं कहन लगे बचण दी कोई उम्मीद है?

जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताई तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन, एक है भी मैं कल्ला। सारियां दी निगाह मेरे ते चली गई, कहन लगी एक कल्ला है, लगदा भी कोई साधु ना, एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दे। जद सारे मेरे वल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देने। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच सुट दिता। मैं ता किसे तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट लिया। ओ दे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे पासे कीता ते नाले किया।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारिया दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा भाई दिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की थी जोगी तर गया इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे।

0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस दादार दा मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उतर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता।
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस करे ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोहे भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानी सो सिर कफ।

कोई भी रस्मा बांझी ना रहे, क्योंकि गुरु नानक दे घरों जे कोई दाता मांगता है ते दाता मिलदियां ने, दाते वालियां नूं दाता भी मिल जाता है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करते सन, कहिंदे ऐ गुरसिख चात मार, धियां पुत्र मंगे वह भी मिल गया, धन दौलत मंगिया वह भी मिल गया, सोहने कारोबार लई अरदासां कीतियां वह भी मिल गया। भी ऐ गुरसिखा, जे किते तू गुरु नानक मंगिया हुंदा तेनू गुरु नानक भी मिल जाना। आओ भई झोली विछा के

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं कि यह संसार एक दंगल है और इस दंगल दे विच पांच पहलवान खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। कोई काम तो बचता है तो क्रोध दे वश हो जाता है, क्रोध तो बचता है तो लोभ दे वश हो जाता है, लोभ तो बचता है मोह दे वश हो जाता है, हंकार इस नूं डेग लैंदा है। ये पांच पहलवानड़े ऐसे हैं जो हर एक नूं डेग देंदे हैं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं कि इन्हां पंजां पहलवानां तो मैं किवें फतेह प्राप्त कीती, ओ है गुरु दी बख्शिश। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मेरी पिठ ते मेहर भरिया हथ रख दिता। वात वजन टमक फेरियां, मल लथे लैंदे फेरियां, निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जी। गुरु दी बख्शिश दा सदका।

ऐसा निर्मल जल होंदा है, रोगी शरीर नूं अरोग कर देंदा है। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा है, अरोग शरीर नूं नित दा रोगी बना देंदा है। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे।

सुनिए सिख सही साहब जी कहंदे हन आ दुनिया दे लोको मेरी एक सच्ची सिख्या ले लो।

0: ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਮਨੁੱਛਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਂ ਜਪਣਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਉਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਰਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੀਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਛਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਧੰਦੇ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂਗਾ ਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ, ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਆਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ? ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਬਲਦ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ, ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਲ ਖੜੋਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ, ਆਖ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ 500 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ 500 ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। मैं मुक्त नहीं होना चाहता। बादशाह से कहने लगे, चल मर्दानिया, अजय इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह मुड़ उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच घर दे बाहर खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया है। साहब जी कहन लगे, आ मर्दानिया, आ जेड़ा आ कूकर बैठा है ना कुत्ता, आ पता ही कौन, आ पिछले जन्म विच ओही बिरद बाबा है। पातशाह इस हालत विच आख्या, हां हुण भी जाके पुछ लै जे मुक्त कर दईए इस नूं। मर्दाने ने पिछले जन्म दी सोझी दे के उसदे कन विच याद कराया, ओ इवें भोकिया जिवें कहिंदा होवे, ना महाराज मैं अजे भी मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि मेरे जिहड़े लड़के हन ना ओ ऐसे अणभोल हन, जो सौंदे हन उन्हां दी नींद ही नहीं खुलदी, ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हां पैरे ते कि कोई घर दा धन ना लुट के लै जावे। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी हसे आख्या, चल मर्दानिया अजे होर जूनियां पाल। कुछ समय बाद जदों एक मरण लगा, ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच धन दबिया सी, ते सप दी जूनी पा के उस धन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नूं पंगूड़े विच पा गए, ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया, ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया, रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया, लठां नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नूं तारदे होए कुछ वरियां बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे, तां की वेख्या, ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप तार के गंदी नाली विच पई होई है। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी ने आख्या, मर्दानिया आ जेड़ा कीड़ा नाली विच पिया ना, इस नूं बाहर कट। ओ बादशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नूं बाहर कढ़िया, साहब जी ने उत्ते जल पुआया, अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या, क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दीए जां हुण भी जोनियां भोगणियां? साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोझी जो दे दित्ती सी, ते फिर आवाज आई, पातशाह मैनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनियां पाईयां, आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे दे के धन इकट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया, इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर बहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी कहंदे हन ना बाणी विच, बहुते फिर बहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जी, हो हुण मुक्ति देओ। तां साहब जी ने जल दे छटे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नूं नहीं तारे, आ कीड़े उपर भी जल दे छटे मार के आख्या, जप श्री वाहिगुरु, तुसी भी जपो सारे श्री
1: वाहिगुरु।
0: सतनाम श्री वाहिगुरु दे छटे मार के जदों उस कीड़े नूं साहब जी दी नजर पई, ओ कीड़े दी जून छड के बिरद बाबा दिव मूर्त धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोक पिंड दे वासी इकट्ठे होके आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी उस रूप विचों परिवार दिया नूं आख्या आज जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन गुरु नानक पातशाह निरंकार दा रूप है इना दे चरणों विच पाओ तां तुहाडी कल्याणता इना दा बचन मनोगे तुहानू सारे सुख प्राप्त होंगे। इस वास्ते साहब धन गुरु नानक पातशाह कहंदे हन नानक आखे रे मन सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। इना स्वासा दे नाल प्याड़ी तेनू 24,000 स्वास मिलदे होना स्वासा नू जप जप के सफल कर। धन बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले आप क्या करदे सन त्याड़ी एक पाठ सुखमनी साहब दा कर लै तेरे दिन दे लिते हुए 24,000 स्वास सफल हो जाणगे। साथ संगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: फिर आप बड़े प्यार नल क्या करदे सन जे कोई शी माला पहली पौड़ी दियां रोज कर लवे ना मेरा ते गुरु नानक उदा जामन होया मैं नरकां विच नहीं जान देंगा। प्यारी साथ संगत जीओ आ मनुष्या जीवन जो मिलिया ना आ जिस तरह इत्थे अपना घर बढ़ाया अगां भी घर दी सोचो जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। उथे तां साहब जी कहंदे ने कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही। उथे जेड़े कूड़ियार हन उन्हां नूं थां नहीं मिलनी उथे तां सचियारां नूं थां मिलेगी। भावें कोई भी होवे किसे जाति दा होवे किसे मजहब दा होवे किसे धर्म दा होवे जे उसनूं परमात्मा नूं याद कीता है गुरु नानक पातशाह दी आराधना कीती है नाम जपिया तां कबीर जी निर्णय करदे हन गुरबाणी विच के कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए ओ कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह कहंदे हन हुण वेला ही मेरी एक सिख्या लै लै दुनियावी सिख्या तां लैंदा हन एक मेरी सिख्या भी लै लै नानक आखे रे मना सुनिए।